बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नरक कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राजमंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ मन

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नु चलाना जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह हो गई है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख बात। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्हें कहा मैं सिंघां नू पंज ककार की रहत दिती है, ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्हां दी मुख वाक बाणी तुसी श्रवण करो। गुरु साहब

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुरु उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राही भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी रहो इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करने वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करने वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिक्र नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दियां बीड़ां भी इन्नियां बन गईयां ने जिन्नियां दसां पातशाहियां तों रल के भी नहीं बनियां। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आंदा है कि जदों किसे सियाणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात होवे तां फिर अंदरों लज्जा आंदी है कोठी कंबदी है ते लरजा आंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तों भी अनंत गुणा होवन तां भी थोड़ा है। कीर्तनी वीर जत्थे प्रचारक ते कलम दे तनी व्याख्याकार कर कर होण जरूरत है लेकिन इस दे नाल सारे ही असां अपनी अपनी जगह ए फिक्र रख

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तामी चंगा ही है रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए अपना बोले आप सुने।

तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लडाया। रिलाइंग ऑन योर मर्सी डियर लॉर्ड आई हैव इंडल्ज एंड सेंशुअल प्लेयर्स लाइक ए फुलिश चाइल्ड आई हैव मेड मिस्टेक्स ओ लॉर्ड यू आर माई फादर एंड मदर। इट इज इजी टू स्पीक एंड टॉक बट इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योर विल। पॉज। I stand tall, you are my strength, I know that you are mine. Inside of all and outside of all, you are the self-sufficient Father. O Father, I do not know how can I know your way. He frees us from bondage, O saints, and saves us from possessiveness. Becoming merciful, my Lord and Master has ended my comings and goings in reincarnation. Meeting with the Guru, Nanak has recognized the Supreme Lord God.

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर।

शब्द काली कोयल तुम कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली। इस दी बंदिश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप, दो रागां दे मिलाप दे विच है। आप प्यार ना सरवण करो।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जन नानक धूड़ मंगे

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है। आम जिन्हां सजना जां भैणां नूं ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनूं इस गल दी हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकण ते इस चीज नाल बोलण, ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

किस प्रयास सुनाइए कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे खाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

राग टोडी विच आप जी शब्द श्रवण करोगे। पंचम पातशाह जी रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस राग विच शब्द दर्ज है उसे विच आप जी इस श्रवण करोगे।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर, उन्हां दे चरणां ते स्याणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आख्या